तू मेरे काम लग जा मैं तेरे काम लग जाना मैनू तू अपना काम दे दे ते मेरा काम तू ले संसार जैसा चल जाए एक दूसरे दे काम आना जिस काम की जिदी जिनी समर्था हो बड़े पुराने समय तो बंदा काम का लैन देन करता रहे जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता जेड़ा कर सकता उनू जाके बेनती करा तू ये कर दे एदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस एक दूजे दे काम आ सकी संसार च भी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा किया है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा का मुंह भी वेखना पिया महाराज सानू एक प्रेरणा बख्शिश कर दे कि जे परस्पर काम आउन दी एक दूजे का काम करन दी सांझ पाउनी है तू वाहू नाल पा के देख मालिक तू जो चाहे कर सकना है तेरी समर्था महान है कर्ता पुरख जो है सब कुछ कर सकना है ते मैं कुछ भी नहीं कर सकता मैथों कुछ भी नहीं हो सकता जब कुछ भी नहीं हो सकता मेरे को एक काम तो हो सकता है कि मैं हाथ बन के तेरे सामने खड़ा हो जावा अरदास हो सकती है और सच्ची गल जानना अरदास खड़े हो जाना ही रब का काम है ओदे काम लगन का मतलब यह है कि असी ओदे चरणा ते टह पईए ओदे नाल सांझ पाउण वास्ते प्यार पैदा कर लईए हिरदे में और जिसले साडे हाथ जुड़ जाण मस्तक न्यों जाए इहदे दो अर्थ हुंदे ने हाथ जुड़ जाण का मतलब है साहिब जी मैथों कुछ नहीं होना इन्हां हाथां ने कुछ नहीं कर सकना इन्हां हाथां तो होना कुछ नहीं यह हाथ बहुत थोड़ी समर्था वाले ने इन्हां हाथां च ताकत नहीं कुछ कर सकन आप करता पुरख हो इन्हां हाथां तो कुछ नहीं होना यह हाथ बज गए यह हाथ तेरे सामने जुड़ गए इन्हां तो कुछ नहीं होना एक तो दोवें हाथ बन के सत्कार हुंदा ना किसी दूसरे का अभिवादन करना होवे आदर करना होवे तां भी हाथ बनने लेकिन प्रभु अगे गुरु अगे हाथ बनने का मतलब यह भी हुंदा है कि इन्हां हाथां तो कुछ नहीं होना बल्कि जिसले मत्था टेक देने इहदे पिछे भी दो गोज भाव ने एक तो यह हुंदा है कि मैं दुरमत त्याग के गुरमत लैण आया लेकिन समर्था के संबंध में भी मत्था टेकने मत्था टेकने पातशाह इन्हां हाथां तो होना कुछ नहीं इस दिमाग तो सोचिया भी कुछ नहीं जाना मैं तो सोच भी ठीक तरह नहीं सकता मेरे सोचने च बड़िया भुलां ने मेरी थां सोचो भी तुसी मेरी थां ते मेरे वास्ते व्यौंत भी तुसी बनाओ ते करो भी तुसी ते मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो मैं तुहाडी अरदास जुड़िया होवां अरदास अरदाश्त बेनती कर रहा हो अर्ज कर रहा होवां मैं केवल अरदास जुड़िया होवां एक ते जुड़ जाए ना बंदा साहिबां ने विश्वास दृढ़ कराया बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है ये वखरी गल है मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है जुड़ना ही औखा है अरदास जुड़ जाना ही औखा है नहीं जुड़े रहिंदा तो इहदे वास्ते भी अरदास करिए बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए तू मैनू अपनी अरदास जोड़ लै अपनी भगती नाल मेरी लिव एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श फिर मैं अरदास च लगा होवांगा हाथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा भगती च लगा होवांगा प्रभु दा होर कोई काम साथों थुड़िया नहीं पिया वाहिगुरु दा कोई काम साडे गोचरा नहीं प्रभु केवल प्यार चाहुंदा साडे कोल सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए अरदास करनी आ जावे ना फिर की हुंदा है जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता एक तां हुंदा ना काम हो जाना काम कर लेना काम नबेड़ लेना ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना पहला तो करन तो पहला ही थड़कदा हुंदा है घबराया हुंदा है डगमगाउंदा है ते जे किते काम हो जाए हंब के बह जांदा है पसीने पूंजदा है सजना मित्रां नूं कहिंदा है शुक्र करना काम निबड़ गया बंदा केवल नबेड़ सकदा है लेकिन सतगुरु जिसले करदा है ते नबेड़दा नहीं सतगुरु कार्ज सवारदा है वड्डी वड्याई अचरज सोभा उस कार्ज विच शोभा हुंदी माण हुंदा सत्कार हुंदा उस कार्ज दी वड्डी वड्याई हुंदी
ਕਾਰਜ ਆਇਆ ਰਾਸੇ ਨਾਨਕ ਕਉ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਸਗਲੇ ਦੁੱਖ ਬਿਨਾਸੇ। ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਆ ਜਾਵੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਰਜਾਂ ਚ ਸੋਭਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਏ ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਰਜ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਦੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ

बेमुख होवन बेमुखा, मैं जे बेमुख मुख डिठे, बदर पापा बदर पा, मैं जे कर वैरी इठे, कर कर सिठा बेमुखा, आपो बुरे जान कै सिठे, लिख न सकन चित्रगुपत सत समुद्र समावन चिट्ठे, चिट्ठी हूँ तुम्हार लिख लख लख एक दू एक दू तिठे, कर कर

संगलो न आवई, जैसो मन लागे पराधीन हीन दीनता में, साध संग सतगुर सेवा न लगावई। जैसो मन किरत बिरत में मगन हो, साध संग कीर्तन में न ठहरावई।

सब लोग में संजोग पो चकवी बेयोग सोग पागहीन जानी है। जैसे दिन करके उदोत ज्योत जगमग उल्लू अंध कंध प्रचीन उन्मानिए सरवर सरता समुद्र जल पूर्ण है त्रिखावंत चात्रक रहत बकुबानिए तैसे

सोपाहीन पागहीन तपहीन बावरी दृष्ट दर्शहीन शब्द श्रुतहीन बुद्ध बलहीन सूते हस्त न पावरी।

अनाथ नमो सर तो सुन दानी नमो सो भिखारी मोसो न दीन दयाल न तो सर मोसो अज्ञान न तो सो बिचारी मोसो न पतित न पावन तो सर

गुरु अर्जन देव जी का कातिल दरअसल जहांगीर ही सी, पर जहांगीर तो इलावा मुर्तजा खां ते चंदू दा भी हाथ सी। चंदू बादशाह जहांगीर दा शाही दीवान सी। जदों चंदू दी धी मुटियार होई ता उसने अपनी धी वास्ते चंगा वरकर लभन लई एक पांदे ते एक नाई नू जो कुछ समझा के तोरिया है उन्हां बोलां नू ढाडी जथा हे क्यों दसदा है।

आपने बड़े प्यार दे नाल जिथे श्रवण कीता है रचना पवित्र भी कीती है नाल मिल के कीर्तन कीता है। ए कबीर जी ने ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था ए शब्द विच दसी है और आखिर विच दसिया भाई ए अवस्था किन्हां नूं प्राप्त हुंदी है जिन्हां नूं गुरु की कृपा का सदका नाम की दात मिल जाए ते नाम की कमाई कीतियां ए ब्रह्म ज्ञानी की अवस्था प्राप्त हुंदी है। अल्लो अलख ना जाई लिखिया गुड़ दीना मीठा नाम रूपी गुड़ जदों गुरु ने मैनू बख्शिया ता फिर मैनू कोई दूसरा पासिया ही नहीं ना को बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बनिया। सो ए दात किन्हां नूं प्राप्त होंदी है मैं अगला शब्द जो तुहाडी भेटा कर रहा ओ भाई साहब भाई गुरदास जी दी वार विचों है और भाई साहब गुरदास जी ने गुरसिख दे छे नियम दसे हन इस वार विच। भाई गुरु का सिख कौन अखवाउण दे लायक है जिदे अंदर ए छे गुण हन ओ गुरु का सिख है उसने आपा परमेश्वर प्रण कर दिता है समझो। तो भाई साहब बड़े प्यार नाल ए नियम दस रहे हन और ऐसे गुरसिख तो आप भी बलिहार और सदके हो रहे हैं। कहिंदे हन जिदे अंदर आ नियम वसदे हन बेशक मेरे तन दे चमड़े दे जोड़े बना के ऐसे गुरसिखां नूं पहना दिओ जिन्हां दे कदम सेवा सिमरन परोपकार लई उठदे हन। सो आओ बड़ा साधारण जिहा शब्द है पर बड़ा अमोलक खजाना है शब्द दे विच सारिआं ने मिल के पढ़ना है। हों तिस घोल घुमाया गुर मत हृदय गरीबी आवे। गरीबी तो भाव है निम्रता। गुरु नानक दे दर ते निम्रता नूं गरीबी करके आख्या गया। गरीबी नूं किसे कंगाली या भुखमरी नहीं समझना। गुरु नानक दे दर ते बाणी दे विच निम्रता नूं गरीबी आख्या गया। कर किरपा जिसके हिरदे गरीबी वसावे नानक इहां मुकत आगे सुख पावे। सो आओ सारे प्यार दे नाल भाई साहब ने जो एक गुरसिखी दे गुरमत दे छे नियम दसे हन बड़े प्यार दे नाल श्रवण करिए।

शुद्ध जब ते हम तरी बचन गुरुदेह हमारे पूत ए है प्राण तोहे प्राण जब लग घट थारे निज नारी के संग नेहो

एका नारी जति है, एका नारी जति है, पर नारी ती पहन वखाने, वेख पराइयां चंगियां, मामा पैना तिया जाने। ये है गुरशी पहला नियम, निम्रता धारण करनी, सेवा सिमरन परपकार करदियां होया भी किसे गल दा मन विच हंकार ना आवे। दूसरा नियम, अपने जीवन नू पवित्र रखना। साहिब कलगीधर पातशाह दा वचन आपने श्रवण कीता है। साहिब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह बख्शिश कर रहे हन, कहिंदे हन जदों मेरे गुरुदेव पिता तिलक और जंजू दे राखे लई हिंद दा धर्म बचाउण लई अपना बलिदान देण वास्ते दिल्ली जाण लगे, तां मेरे पासों इक वचन लिया, शुद्ध जब ते हम तरी बचन गुरदेह हमारे, पूत ए है प्रण तोहे। आख्या मेरे बच्चे इक मैनू प्रण दे, ते ओ प्रण तेरा प्राणा दे नाल निब जावे, श्वासा दे नाल निब जावे। ए प्रण कलगीधर पातशाह ने फिर गुरसिखा को लिया कि मेरा सिख कौन है जिसका जीवन ऐसा पवित्र है। गुरुदेव पिता कहिंदे हन के पूत ए है प्रण तोहे, प्राण जब लग घट थारे, निज नारी के संग नेहो तुम नित बढ़ियो, पर नारी की सेज भूल छुपने होना जी। अपने जीवन नू पवित्र रखना, ए गुरसिखी दा दूसरा नियम है। आओ अगले नियम श्रवण करो। प्यार देना हो तिस

हवे पराई वस्तु पई है उस नू चुक के वर्त लेना तो पासे रहा गुरु का सिख ऐसी वस्तु नू हाथ भी नहीं पाउंदा भाव किसे दी अमानत विच ख्यानत नहीं करता किसे दी चोरी नहीं करता गुरु का सिख जो है पर दरबे नू हाथ ना लावे ए गुरसिखी दा तीसरा नियम है पहला नियम निम्रता धारण करनी दूसरा नियम अपने जीवन नू पवित्र रखना तीसरा नियम पराई अमानत विच ख्यानत ना करनी हुण चौथा नियम भाई साहब दस रहे हन।

चौथा नियम गुरु का सिख ना किसी की निंदा करदा है ना सुनदा है। किसी की निंदा करनी इस तरह है कि उदे अवगुणा का भार अपने सिर ते लै लां। भाव किसी ने कूड़े की टोकरी चकी होवे ते खाम खा उदे सिर तो चुक के अपने सिर ते रख लैणी। ऐसा है किसी की निंदा करनी या किसी की निंदा सुननी। तो हजूर बाणी विच बख्शिश करते हैं कि निंदा भली किसी की नहीं, पर कौन करदे हन मन मुख मुगद कर मुंह काले तिन निंदका नरके कोर पम। इसलिए गुरु का सिख गुर सिखी गुर सिख सुन अंदरों सियाणा बारों फोला। गुरु का सिख बारों फोला है अंदरों सियाणा है। किस लई? किसे नु नुकसान पहुंचाने लई नहीं। अंदरों सियाणा इसलिए है भई जिथे

पंजमानियम के गुरु की मोर लगवा के अमृत छक के गुरु वाले बन के ते फिर जो पंज प्यारे सुमति बख्शन ओदे मुताबिक अपने जीवन नु डालना ए है सतगुर का उपदेश कमावे रहनी रहे सारे जपो रहनी रहे सोई सिख मेरा ओ साहिब मैं उसका चेहरा रहत प्यारी मुझको सिख प्यारा आख्या मैं उदा दास हां मैं उसका चाकर हां जो रहनी बहनी विच पूरा है सत संगत बोलो श्री वाहिगुरु भाई साहब ऐसे गुरमुख तो बलिहार जा रहे।

अल्प आहार सुलभ सी निंद्रा दया क्षमा तन प्रीत शील संतोख सदा निर्वाहे वो होवे गोत्रे गुण अतीत थोड़ा समय थोड़ा ही खावे गुरसिख जोगी जाग दे गुरसिख जोगी जाग दे माया अंदर करण उदासी

नवी म्यूजिक मेमोरी इंडिया फगवाड़ा कंपनी वालों पहले शब्दों की कैसेट संगतां दे वास्ते भेंट कीती है। सच्चा पातशाह कृपा करे कंपनी दे मेंबरां नूं अपने चरणों का प्यार सेवा करन दा बल बख्शे।

अगर आप सारे मैं पिछले की इतना भी क्या है इसमें सचमुच एक सत्संग समझते हुए इन शब्दों के नाल अपनी आत्मक अवस्था को उच्चा करने की कोशिश करिए। इन शब्दों तो असी अपनी तस्वीर देख सकते हैं। मैं आप जी के सामने अज के इस कीर्तन च एक शीशा पेश करना चाह रहा हाँ, जिस शीशे दे विच असी अपने आप को देख सकी। मैं आप जी के सामने साढ़े सतगुरुओं की जो अंदरली अवस्था है उन्हां दी स्टेट ऑफ माइंड वो रख रहा हाँ, ताकि सानू कुछ ना कुछ से चोट लगे कि असी क्यों जहे हाँ, अते जिन्हां दे असी अपने आप नू होण दा दावा दिंदे हाँ उन्हां दे हिरदे किहो जहे हन। आओ हुण इसे ही शब्द से जिस तरह भगत कबीर जी ने अपने अंदरली अवस्था इस दृष्टांत दे नाल पेश कीती है, हुण मैं गुरु अर्जन देव जी महाराज दे कुछ एक प्रमाण आप जी दे सामने रखण लगा हाँ, अते आपने देखना कि गुरु अर्जन देव जी महाराज की हार्दिक अवस्था जो है वह किस

गुरु अर्जन देव जी ने अगेन दोबारा उससे ही औरत का प्रमाण दिता है जिसका प्रमाण कबीर साहब ने दिता है। कहते जिस तरह किसी पत्नी का पति बाहर चले गया होवे, अगर वो हार कज्जर वस्त्र अभरण गहने आदि पावे भी ता भी कहते उस दे अंदर की हुंदा है, मोहन नींद ना आवे हावे अते उस दे अंदर हौके हुंदे हैं। तो उस दे अंदर की इंतजार हुंदी है, उडीनी यानी उड़ीक, उडीनी उडीनी उडीनी कब घर आवे री, कदों वो प्रभु प्यारा घर आवेगा। ये मिसालां दे के भगत दे गुरु दे सिख दी अंदरली अवस्था नू गुरु साहब ने पेश करन दी कोशिश कीती है। अते गुरु ग्रंथ साहब आप जी ने ये भी पंक्तियां सुनिया ही है ना कि खंभ विकंदड़े जेल हां कि ना सावी तोल तन चढ़ाई अपने लहां सो सज्जन तोल। केंदे इंतजार तमन्ना इतनी बद गई है कि अगर किते मैनू खंभ बाजार चो मिल जान ते मैं अपने आपे दी कीमत दे के उन्हां नू खरीद के अपने तन दे नाल जुड़ा के अते उड़ारियां लगा लगा के अगर उसनू मैं लभ सकां तो कहिंदे मैं ए भी करनू तैयार हां। हम भी कांदड़े जेल हां कि ना सावी तोल तन जड़ाई अपने लहां सो सज्जन तोल। तो हुण तक मैं जितनियां भी मिसालां आप जी नू दित्तियां हन इन्हां मिसालां दे विच ए पेश कीता है, ए आप जी दे सामने रख्या है कि गुरु साहिब एक खास किस्म दी अवस्था, एक खास किस्म दा ह्यूमन लाइफ दे विच कीता होया एक्सपीरियंस जो कि बहुत ही पाकशील लोकां ने कीता है उस दे नाल साडे नाल उस नूं साडे नाल जो शेयर कर रहे हैं साडे नाल सांझा कर रहे हैं। हुण जो अगला हिस्सा थोड़ा जिहा आप जी दे सामने मैं रखना चाहना हां

तेरे अंदर कदे वैराग, तेरे अंदर कदे उदासी, तेरे अंदर कदे उपरामता आउंदी ही नहीं है। पाप उन्होंने कहने का यह है कि जदों अकाल पुरख वाहिगुरु का प्रेम किसी लग जाए तो उस दे अंदर सब तो पहली चीज की होंगी है, बाकी तमाम चीजों के प्रति थोड़ी रुचि घटनी शुरू हो जाती है। जगत के प्रति संसारी चीजों लिए एक उपरामता आनी शुरू हो जाती है। उस उत्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का आप जी को एक जो श्लोक है वह सुनाना चाहना। कहते हैं

मैं इस सारी दुनिया की हालत देख के मेरा तो मन उदास हो गया है। मैनू तो इस को सार नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस कोई तत् नजर ही नहीं आता, मैनू तो इस कोई काम वाली शायद नजर ही नहीं आती। देखते हैं कि हार जरे जो लाकरी केस जरे जो काश, ये जग जरता देख के पहो कबीर उदास। तो गुरु महाराज सानू ये समझा रहे हैं कि इंसान तेरा चित करे ये तमाम कुछ जानदा होया देख के निराश नहीं होंदा, तेरे अंदर कदे उपरामता नहीं आती, तेरा चित कदे इस तो कोई डूंगी चीज नहीं लगता, तेरा चित कदे अजिही चीज नहीं लगता जिहड़ी कि हमेशा ही कायम रहे, ना कि तू उन्हां चीजां नूं लगता रहना है जिहड़ियां ने बिनसी जाना है। तो सतसंग जी अज दी सारी विचार दे विच जो सानू सुनेहा मिल रहा है, जो सानू उपदेश मिल रहा है, वो ये है कि गुरु महाराज कहते हैं उस इंसान के पाक अच्छे हैं। बस इस दे नाल मैं अपने विचार नूं कंक्लूड करनी चाहना। गुरुआं दी नजर दे विच वो इंसान बहुत फॉर्चुनेट है, वो इंसान बहुत ही भागा वाला है, बहुत ही किस्मत वाला है जेदा दिल कुछ होर भी लभे, जेदा चित इन्हां तमाम दुनिया के खाणिया के नाल भर गया होवे, पोशाकां दे नाल भर गया होवे, जिहदी रुचि बदल गई होवे। असीं इह सुणदिआं सुणदिआं अंदर इह देखणा है कि साडी रुचि बदली है जां नहीं बदली। असीं अपने आप से सवाल करना है कि साडी रुचि की है, असीं जिंदगी च की लभदे हां, किस किस्म दी साडी रुचि है, अते जिस किस्म दी रुचि हुंदी है उसे किस्म दा इंसान हुंदा है। आ हुण गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज का एक श्लोक, इस दे उत्ते जो मोर लगांदे हन अपने एक श्लोक के द्वारा उसनू सुनो। कहिंदे

प्रभ कीजे कृपा निधान, हम हर गुण गावेंगे। हाँ तुमरी करो नित आस, प्रभ मुए कब गल लावेंगे। कदों वो दिन आएगा जदो तू मैनु अपने गले लावेंगा। गुरु दे गले लगी है सारा शरीर पवित्र हो जांदा है। ते जे गुरु ग्रंथ साहब जी दे गले लगी है तन भी पवित्र ते मन भी पवित्र। एक बारी आखो प्यार नाल सतनाम।

प्रेम सहित गल लावे। छोटी उम्र दा कोई 10 साल दा ये बच्चा पता नहीं कौन सी जो इस दे नाल नाल अज गाउंदा आ रहा है। प्रेम सहित गल लावे अज सारी खेल भुल गई। अगे ता बड़ी चा नाल खेलदा सी, कई बार खेलदियां खेलदियां कोयला हो जांदा सी, पर अज तां सूरज भी नहीं डुबिया, घर आ गया, चुप है। मां ने पुछया, बेटा अगे जदों तू खेल के आना तेनू भुख लगती, तू रोटी मंगना या ये गल कहना कि मैनू प्यास लगी पानी पीना? अज तेनू भुख नहीं लगी, तेनू प्यास नहीं लगी, पर ये अजे भी चुप है। मां होर बड़ी परेशान है, प्यार कीता चोली विच लिया, पुछया अज परेशान क्यों है? क्योंकि इको ही एक तां पुत्र सी। ते जे मां पुछदी है कि अज तू जल्दी क्यों घर आ गए, कहन लगा मां कोई कह रहा सी अज प्रेम सहित गल लावे। कौन है वो गले लाण वाला? मैं सोच रहा सी कि पिता दा साया ते बचपन तो ही उठ गया सिर तो, हुण कौन गले लाएगा? जिन्ना बच्चियां दे पिता घर विच हुंदे ने ओ खेलण तो बाद अपने पिता दे गले जाके लगदे ने।

ऐसा गुरसिख मिल जाए ओदे मिलिया पाप पुनिठ दा भाव है पापा दा भी नाश हो जांदा है। भाई साहब कहिंदे ने गुरसिख दा जीवन ऐसा होवे ते मैं उस तो

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, एक तेरे से दिखता फल है जेड़ा अज मैनू नवा जीवन मिले। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता रजनी, मेरा रोग तो उतर गया रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, कितने ने कितने ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी के दर्शन कराए, तुसी मैं गोंडवाल लग गए, तुसी मैं छबीर वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: यह तो ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: इस सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे। तो मैं रिड़दा रिड़दा ऐ छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नूं फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी तुसी टाणी नूं फड़ के पानी च गए सी ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, तां फिर तुसी ऐस हाथ नूं भी पानी च पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता के दरबार स्वीकार सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्मपारी। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,